0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाते से तार खाना पशा पर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारे खाना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला नफाशोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपोई पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले पर शे मार्किशे देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

0: सलाम, मैं हूँ खुशबू फ्राम करक तख्त नसरती से।
1: जो तुम पे
0: माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत खूब बहुत नाइस है।
1: मेरे हम
0: बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम तो लिखी इंडिया ने कस्मेटिक्स पाकिस्तान में तो लिखी मजार था तो लिखी चौक चौक छठ छठ ना। हाय हेलो हाउ आर यू, इज मी फरियाल फ्रॉम बनो माई फेवरेट आर जे अहमद सार, वेलकम टू द शो। योर वॉइस इज वेरी स्वीट एंड क्यूट, माशाल्लाह मैंने आपको देखा है, बहुत क्यूट है। हाँ माशाल्लाह, ढेर चाहते मेहरबानी, शुक्रिया। क्यूट सर्वगुर हो फरियाल फ्रॉम बनुगुल। इंडिया ने कस्मेटिक्स पाकिस्तान हमारे स्तर को पैगाम बिल दरकुल वाली कहना चिमंग बदे इस्तेमाल मजीद खराब भी कहना खराब भी ज्यादातर खल गुसर दा फिक्र भी दा पैगाम भी चीजें इस्तेमाल कमा हस ना जमा मख पाने चिकम देनो एक नीज पिम्पल्स डार्ट से कम दे हगन और हम सेवाशी सम देर ज्यादा राड़ा मख खराब किया चिकमने मख पाने में एक नीज राशि पिम्पल्स राशि डार्ट राशि जो इस्तेमाल हूँ महाचना जमात नूर से मसले मसाइल पैदाइश बिल्कुल जान सर आयो खबर लिश के लिश के नोट के जी न खुबास्ताज मख खराबी न बस्ताज मख पाने विष्टान ना खी जी न बस्ताज मख के जिकमने एक नीज पिम्पल्स डार्ट नूर सेवा के भी कल चिदास्ता मख खकवि कना नुकर खकवि न कना नुकल बे खराब भी हम न खा जी बिल्कुल मई शमरी के मख बकी के बिल्कुल मुझसे टेलीफोन कॉल कवली शी पास 0307032517 जमंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाजी फारूक खान कम जी पदुबे प्लाजा बेसमेंट करक के मौजूद दे दिन अलावा जमंग सर नूर होम डी ज्यादा एड्रेस एड्रेस था वाई मोहताज तुम्हें वेल हम दी और वाई

माना दमाजल तपसू न कवी माँ माना दमाजल तपसू न कवी द हलक सुमर ग्रांस वलू न कवी जच एतबार बंदे खोलियम छा ज चिप एतबार बंदे खोलियम छा हगा पिंज वक्ता मंजू न कवी।

जेफा कंपनी बेहतरीन शैम्पू रुगली दी। कलवंजी शैम्पू, प्यूजे शैम्पू, आओ देवरीजे शैम्पू जनाब, राय शैम्पू, बिल्कुल जी दल तक डेरे तकसीम करे जी, डेरे का सुने ता में वेर कड़े ले, डेर पे खुशी दीजिए, नुतु से है इस्तेमाल कीजिए जेफा कंपनी शिफा शैम्पू।

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक। छोड़ दिया देखो
1: यूं बहना। सिफात जैतून हर्बल आयल कतासु विख्त गुर्जी यादा मैदी तकलीफी और या ब्लड सर्कुलेशन मुठीक नेवी जोड़ो दर्दुना यादा पटो दर्दुनेवी या पबदन कम जय के मोह दर्दवी और दादीना इलावा तासो द बवसीरो डेर ऑपरेशन ने कड़ीवी और टीक्षेवी नवी तदि टोलो मसलो हल द पारा सिफात जैतून हर्बल आयल इस्तेमाल कए दावत आसोता करक बनु लकी मरवत शिमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान टांग और डेहान के हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के आसानी सरा मिलावेगी। नोस लाडशे निजदे कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर ना सिफात जैतून हर्बल आयल तला सकड़े मजीद मालूमात पारा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहब सरा पदे नंबर रबिता कवले शे 0301-80-84-300।
2: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे संदर ज लगावली दीदा सशाई हो रे
3: जी दाखो मेरे रेडियो पर बाजूर से उपस्थित दो नो दा बेंड में तो वो 88.4 पर बंदे रोग लाल
2: तारे खाना दा 88.4 से शायद
3: MSG 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो पर बंदे रोग ला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी 88.4
2: ब्याहर साचे बाजोरत अलुची चेवा रेडियो जों ता जहा ओखलो चिदा से खोजा खोजा प्रोग्रामिना ब्या जहा ओरवो
3: बिल्कुल मेजीर साचे सी वार रेडियो तो ता हा ओखलन त बिल्कुल पाटासी शरीय चार बंदे खोजा खोजा प्रोग्रामिना ख्वाजे ख्वाजे सांदर यावरे दाई से।

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman.
3: मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला में।

अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

हमारा शराबे हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके एहसास।

0: अच्छी और थिंक प्रोग्राम से गप शप मसला शेर दे गुरु नेक्स्ट कलर और दूसरा से किम के ना सॉन्ग ब्याह दर बनवरो खुदा से किम के ना फिराव दर बनवरो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: सु खबर के किम सीना
1: आम
0: ना खबर के मैं खबर के दे देख रखना अच्छा आम ना बाजी आम ना ट्रोल आम ना चिकन के ना खोरा के सदर तो वे चे का बाजी वे का खोरा के रो तो वे का देने ला ट्रोल दर तो वे ट्रोल खो खेर दे या चिकन के ना मिश खाई वा ट्रोल स्टा के ना हाँ कला कला टेम चे पगलो कालो का ना गीत में एक वाले किसे देर जो तक ले का ना खो पगलो खुदा पता स्टा ना जी दो वफात सो दो का दो चिकन बीमोर दो और का बीमोर भी ना स्पेशल दो गोलवर तक की और का चार तक के प्रोग्राम से काल के नजर चा पगल तो शॉट डर विल कम इन के वजह दो काल तो खुरुशी ना ना प्रोग्राम से काल कड़ा
1: हूँ
0: सारा अच्छा पागे के साव हो सेवा अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम ना टोटल ओवर वे अभी अच्छा हर टाइम उमर प्रशीन में 3 बजे प्रोग्राम दर तक खड़ा है वो
1: गामर वितरण को दिन में वर करने के तबल मना
0: अच्छा वाल मना रोल यानी वाल माथान दर वो
1: कपड़े यार वाली
0: अच्छा कपड़े यार दास भी आकर ऐसे तरतंगे दे वो दिन इलाव तो प्रोग्राम दर था प्रेयर दो दिन इलाव की तरतंगे चाहिए चला पैसे डर खोश आई दाई मशरूम खर सारा नुस्ताय तसवाय चिदरसी कना स्पोन स्पोन स्पोन शुरू
1: कर हां
0: तो मशरूम चिकन के नल पर में खबर रख लेना चो मशरूम सड़ी सारा वड़ी के नगर ओलाय करा वेचे दौर से मिठी भाई दगर वेचे तो सारा वड़ी के में काई चेरे दा कना चेरे सारा वड़ी के में काई दा कना नो जो अच्छा वड़ी के काई दा चना वाला में दगे ते दा कना ची वाद के खुंदी हां डेर जो तमन्ना प्रोग्राम के ख्याल रखियो जहां सर डेर जो तमन्ना ख्याल क्या वाले।

अच्छा सबर कवा सबर सबर दे पबे सबरे मशु के चामंद ले देना अच्छा सबर कवा सबर सबर सबर दे अच्छा सबर कवा सबर